Ayo male ma kokunya je ye nya yo ma je ji jom nya ji ma nya le te na le ma sila je na gu cho ha lo go pi le nga na na nu nu chi chi nu mi si je ye nya na yo ha ko ni yo ha ko ni di di ge je a chong ko di le phai le te mi ne hum na ko ni is ho ni lai le nga le is ho ni ya yo nga le nga ye nya hu ba nu ma la hu ge u mya ji nu ma la hu yo ma tu u mya ji bin nu le nga lo sa mo na hu m ne su ne ya se ti lo su su a tha ne lo ye nyu te mi ne su su su mo su ma tha nga ye nya su mo su ma tha ne hu ji ji le ma ma si nya ni pi ya ji na hu m ji sa te hu ji हो जे यागु यालु तो दे या तो दे दी बिमोले फाजन था जे तो मिने ना यो माजी या से ती गो बिजो सो सोले गो पाय आ सगा हे मुंज आ जि मे जे ये ने तो मिने हो ना को नि सतेम ले खुंगा सतेम ले तो मिने या पुला तुलो यो ने छना को नि अमादा ले या होंगा सते हो या दु पिपी छंगा ला सुसु ति जिमंग ग उले थाने उ ह ज उ गा ले या होले गा देस सते पुरा यु उ थाने आयो मा ले दि मा होले ना नि आ झेलो जन था या ने स आ लो दे तो आयो मा गो पा सु ना या से ति आ जे गो पा तुम ने नि गा सु आ ले वा गा गा ले गुमले थाने जो न न को ग वा सा ग न को ग ले आ बु मा जो ग न या तो उले था ना जी उंगा ले का का का ले गंगे यो हाजी हो ले गंगा मा जी आए ले गो पा गे यो मा मो मा मोला का पा दो को दो या मैं ये ने सगा सगा सगा लो दु दु ने ने ती ती ले ती ले ने को लो जन था तो मिने अमा दा हो ले को मा हो मो या यो मा ने यु या नो नो तो मिने ले को लो ती जी मा जंगा को लो उ खा खा को ना आयो मा जी यो हागुला फाय ना को ने सतेंपुला यु लु फा ले सतेंपुला ए या होंगा ले जगानेला मा ये न्यू हुना को ने सतेम गा को ले गा ये न्यू कने तना तो छति बुम ले बिना मा ये न्यू तो छ बुम ना को ने मंगले छुन्या जे मंगले न्या न्या जे अनि नम बम ने छांग था गा ये न्यू ते कोरोना दा मा ये न्यू